0: यार क्या बात आ, किदा थानो की लग्या है इदां दा गाना सुन के? वैसे है तां बहुत ज़्यादा मायूस करन वाला आ, जे ये भी कह सकते हैं कि थोड़ा जिहा डाउनफॉल वाला आ, पर है तां सच्चाई आ। देखो देखो कैपिटलिज्म ने ना सानूं एक भुलेखा पाया होया आ कि अगे वधो सब कुछ करो, पर मैनूं लगता कि जिथे असीं चढ़दी कला की गल करते हैं, जिथे असीं अगे वधन की गल करते हैं, उत्थे एक चीज़ तो है यार, मिट्टी नालों दूर आने का दर्द जिहड़े लोग समझते आ उन्हां वास्ते बड़ी वड्डी गल आ। कहिंदे कि अपनी मिट्टी तो दूर आना, अजकल तो आपां इह कहिंदे आ ना कि असीं तरक्की वास्ते आए हाँ, असीं अपने रुजगार की भाल दे विच आए हाँ, अपने फ्यूचर चंगे ब्राइट फ्यूचर दे लई आए हाँ, पर किसी वेले जे आपां अपने बजुर्गों दे वल वेखीए, उह इन्ना बड़ी वड्डी गाल हुंदी सी कि जा तेरा कख ना रवे, जा तेरा जिवें नहीं कहिंदे हुंदे सीगे कि तेरी औलाद नूं जे अग्गा बूटा ना लगे, जां मतलब उह चीज़ आ कि असीं अपनियां नस्लां नालों टुट गए हां, जिहनूं कहिंदे सीगे जा तेरा, मैं उह कहना नहीं चाहुंदा उह शब्द, कि असीं आपदियां नस्लां नालों साडी उह जिहड़ी जिहड़ियां नस्लां साडियां उत्थे होणियां सी उह होर धरती दे उपर हो गईआं। सो सानू कुदरत ने एक नियम दे विच बन्न के एक धरती ते भेजिआ सी। देखो ये चीज़ां आ कि तुसीं जे इसनूं कैपिटलिज़म दे नाल वेखोगे तो बिल्कुल इहदा कोई तत्थ मोल नहीं आ, पर जे तुसीं इहनूं भावक भावनात्मक तरीके नाल, जे तुसीं इहनूं इमोशनल दे नाल, जे तुसीं अपनी मिट्टी मुहब्बत प्यार उस चीज़ दे नाल वेखोगे ना, तो बड़ी वड्डी गल आ कि जे तुसीं अपनी मिट्टी नालों दूर होना। जिहड़े शायर लोग आ, जिहड़े इंटलैक्चुअल लोग आ, उह इस चीज़ नूं बहुत वड्डा मानदे सी कि मिट्टी नालों दूर नहीं होना। जिवें तुसीं मेरा दागिस्तान किताब पढ़ी आ, तो जदों उह इक माँ दा बच्चा बाहर दूजे मुल्क दे विच चला जांदा उह कमाइयां करन, तो उह जदों अपनी उहदे बड़े साल उह आउंदा नहीं, तो माँ नूं लगदा कि उह चाहे खरे हैगा वी कि नहीं हैगा, तो बड़े सालों बाद कि उहदा दोस्त आउंदा तो उहनूं सब तो पहले पुछदी आ कि उह कहिंदा कि तेरा पुत्तर हैगा, उह कहिंदी पहिलां मैनूं इह दस कि उह अपनी बोली नालों टुटिया तो नहीं, तो जे टुट गया तो उह नहीं हैगा, क्योंकि जिहदा अपनी मिट्टी नाल प्यार, अपनी बोली नाल मुहब्बत आ, उहदे वास्ते इह चीज़ां व्यर्थ ने। सो 905-673-3337 905-673-3337 गल्लां होर पासे चलिया गईयां। सो थानू की लगता कि रिश्तियां नालों, गूढ़े रिश्तियां नालों, अपने रिश्तियां नालों, खून के रिश्तियां नालों दूरी पा के परदेसां दीआं धरतीआं ते लंबा समा वह जुदाइयां पाउणियां कि वह वर्थ इट हैगियां कि वह मुल उन्हां मुल हैगा उन्हां चीज़ों का, जे आप पैसा कमाउण पिछे फ्यूचर पिछे रिश्ते छड्डी रखदे आ 8-8, 9-9, 10-10 साल, 15-15 साल, कि वर्थ हैगा। 905-673-3337 जुड़ियो पंजाबी लहरां दे नाल। जी सत श्रीकाल रुपिंदर जी, तुसी आउने रहो।
1: हाँ जी सत श्रीकाल जी।
0: जी सत श्रीकाल जी।
1: सवाल ने सच्चा सारियां गल्लां जिन्नियां कहियां ने गाइयां। हाँ जी, इह तां बंदा तां इत्थे तुरिया फिरदा कबूतर, उह तां उत्थे पंजाब जी फिरदी आ।
0: बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। 905-673-3337 जुड़िया पंजाबी लहरां दे नाल।

0: multiple locations in GTA. For more information, visit rajdhanisweets.ca.
1: कार वैन ट्रक दा कम होवे ता याद रखो रॉयल ऑटो सेंटर रिलायबल अफोर्डेबल अते ऑनेस्ट सर्विस जिथे कि मैं भी गड्डियां नु लेके जाना रिपेयर दे लिए रॉयल ऑटो सेंटर टेस्ला दे व्हीकल्स ते भी कम करदे कोई भी रिपेयर किस भी मेक एंड मॉडल सेफ्टी सर्टिफिकेशन उबर लिफ्ट दी सेफ्टी करोनी है स्पेशलाइज करदे ने इलेक्ट्रिकल अते कंप्यूटराइज्ड डायग्नोस्टिक कम च स्टील्स एंड मेलनी रॉयल ऑटो सेंटर एंड एमिशन टेस्टिंग 905-799-1478 905-799-1478 रॉयल ऑटो सेंटर क्या बात है हाँ जी 1981 हाँ जी वीरे
2: हाँ जी वीरे सीकाल जी की हाल चाल है
1: वधी वधी वीरे की बंदा
2: बस वधी वधी है वीरे मैं कमेंट करना चाहूँगा भाई अपनी फैमिली नाली ही रहना चाहिए था बट अलग अलग रह के इट्स नॉट अ वर्थ है ना अपना लाइफ जाना है कितने भी हाँ वर्ल्ड च एक लाइफ कटनी होंगी एक लाइफ जानी होंगी लाइफ जाना चाहिए लाइफ नू लाइफ इज टू शॉर्ट है ना यही चीज मैं कमेंट करना चाहूंगा भाई कट्टो ना लाइफ यार किक चीज पिछे भज के हमेशा बैलेंस बना के चलो पैसा लोकी बड़ा मुख रख लेंगे हाए पैसा वो पैसे बनाने के चक्कर आपकी लाइफ इन्ने साल खराब कर लेंगे ना
1: खराब कर लेंगे
2: हां जी हां जी लोकी ना जिवें एक चीज ते फोकस नहीं करदे गे हुण जिहड़े मर्जी वर्ल्ड जिहड़े मर्जी चल जाओ बंदा मेहनती होना चाहिए मैनूं नहीं लगता कोई काम ना मिले जिहड़ा बंदा मेहनती है वो कुछ भी करके रोटी रोटी चुके कर लूगा ना एक चीज नूं तुसीं लगातार करोगे ना आने वाले पांच साल चार साल लगातार करोगे वो तुहानूं काम आपे ग्रो करदा जे तुसीं इमानदारी नाल काम कर रहे हो मेहनत नाल कर रहे हो किसी पिछे लग के बाहर जा वड़ो ये कर लो उठे नहीं लेना चाहिए तुसीं हमेशा अपनी उम्र देखो अपनी फैमिली देखो उस तों बाद डिसीजन लो
1: तुसीं फैमिली नूं हुण पेरेंट्स नूं मिलने नूं किन्ना चिर हो गया तुहानूं
2: फैमिली मेन है जी काम कार चली जाने बेशक मैं 10 घंटे काम कर 12 घंटे काम कर दा डेली घरे जाना मैं फ्रेंड सर्कल बनाया ही नहीं उस अकॉर्डिंगली क्योंकि मैं अपनी वाइफ नू प्रायोरिटी दिना किते भी जाना हुंदा इवन मैं कसीनो भी अपनी वाइफ नाल जा वड़दा
3: बैचलर्स की गवर्नमेंट जेडे एग्जाम होंगे क्लियर कर ले रैंक भी आ गया फिर जे नंबर भी आ जाता फिर भी बंदे का कुछ नहीं बनता फिर कहता यार इतने कुछ नहीं बनना बाहर चल दिया शायद उत्थे जाके कुछ बन गए क्यों क्योंकि उत्थे जेड़े है उन्होंने नहीं पता भी इतने कुछ आके बनना कि नहीं बनना वो सारे नूं बाद इतने आके पता लगता भी उत्थे भी मेहनत सी इतने भी मेहनत ही है कोई फर्क नहीं गा जो इतने पर कह लो भी जिनी देर तक मच्छी पत्थर नहीं चटदी उन्नी देर तक मुड़ना नहीं
1: जी
3: कई मैं कहना चाहना बाकी
1: ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀਰੇ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਲੋਕ ਅੱਕੇ ਥੱਕੇ ਹੰਬੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਟਰਗਲਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਚੱਲੀਏ ਬਾਹਰ।

0: लग्जरी सुपर वीजा इंश्योरेंस लेनी है ते पांटी बबली दा विजिटर वीजा भी लगवाना है। मेरा ते खर्चा ही बड़ा हो जाना है।
1: शमी पठल होरा ने तुहाडा खर्चा छोटिया इंस्टॉलमेंटा च बदल देना है।
2: वधिया बेनिफिट वाली इंश्योरेंस पॉलिसी वाजिब कीमत ते लेके दिंदे ने शमी पठल।
3: सुपर वीजा ते विजिटर इंश्योरेंस दी बेस्ट डील ले। याद रखो इंश्योरेंस एडवाइजर शमी पठल जी दा नाम
4: 416-917-7763 416-917-7763 Life Insurance, Visitor Insurance, Super Visa Insurance, Critical Illness, Disability Insurance, RESP, Travel Insurance, Convert Expensive Mortgage Insurance to Term Insurance.

0: और थाली स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए। मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
1: जे तुसी भी करना चाहुंदे हो अपना खुद दा रेडियो प्रोग्राम, तां अज ही सानू कॉल करो 647-504-1557। जदों किसी दी नजर धुंधली होनी शुरू हो जावे, जिंदगी दे बहुत पल हौली हौली खो जांदे ने। गड्डी चलाउणी मुश्किल, टीवी देखना औखा, ते अपने प्यारियां दे चेहरे भी साफ नजर नहीं आउंदे। इस लई बहुत लोकां ने LAL लाइट एडजस्टेबल लेंस सर्जरी चुनी है। यह प्रीमियम कैटरैक्ट सर्जरी माड़ी नजर नु भी कस्टमाइज कर दिंदी है, बिल्कुल टेलर मेड विजन पेशेंट दी लाइफ दे हिसाब दे नाल। कई पेशेंट्स कहंदे ने कि लाइट एडजस्टेबल लेंस सर्जरी तो बाद मेरी दुनिया फिर साफ होगी, मैं फिर तो नॉर्मल लाइफ जी रहा, ड्राइविंग तो लेके रीडिंग तक क्लैरिटी वापस आ जाती है। क्लिनिक दे सर्जन अते स्टाफ हर कदम ते गाइडेंस, कंफर्ट अते केयर दिंदे ने, ताकि पूरी जर्नी सेफ, स्मूथ अते कॉन्फिडेंस दे नाल होवे। जे तुसी या थोड़े लव्ड वंस कैटरैक्ट्स दे नाल परेशान हो, ता अज ही कॉल करो लूमिया। ऑफिसेज इन वॉन, डाउनटाउन टोरंटो एंड बेरी। डॉक्टर संगेड़ा अते डॉक्टर खान थोड़ी बोली पंजाबी, उर्दू अते हिंदी बोलदे ने। होर जानकारी लई ईमेल करो punjabi@lumia.io, punjabi@lumia.io, 289-982-9597, 289-982-9597।

0: सच कहे जे होंदा।
1: चुल्ले ते पकदी रोटी सच है,
2: मिट्टी चुगदी फसल सच है,
1: गुरु दी बाणी सच है, सतगुर प्यारे सच्चे दी बाह फड़दे हुंदे ने।

सतगुर होए दयाल तो सरदा पूरी है, सतगुर होए दयाल न कबहू झूरी है, सतगुर होए दयाल तो दुख ना जानिए, सतगुर होए दयाल तो हर रंग माणिए। अकाल पुरख के दिते हुए सारे रंगों को माणते हुए जुड़ चुके एक बार फिर एक खूबसूरत चढ़दी कला वाली सवेर दे विच जियानू आखदे हां। इस खूबसूरत सवेर नू ते अज दा रेडियो प्रोग्राम पंजाबी लहरां शुरू कर दें, उम्मीद कर दें तुसीं ठीक ठाक होंगे, चढ़दी कला दे विच होंगे। हमेशा की तरह प्रोग्राम दे विच साडे नाल जुड़ चुके ने पंजाब दी धरती तों निरपक्ष निडर आवाज़ रमेश हशियारपुरी जी। सो स्टूडियो दे नंबर रहणगे जी 905-673-3337 905-673-3337। स्टूडियो के घड़ी के मुताबिक 7:06 हो चुके हैं, थोड़ा साढ़ा 7 होने तो लैके पूरे 8 बजे तक बनया रहना।

0: सो गाज खूबसूरत सवेर का खूबसूरत लोग खूबसूरत मुल्कन सी एच एल ओ डिजिटल ए एम फ्रीकुएंसी राही टोरंटो पेंसिलवेनिया न्यूयॉर्क वाशिंगटन न्यूजर्सी के नाल सानू बॉर्डर टू बॉर्डर रेंज नैगरा फॉल के बॉर्डर तो लैके सारनिया तक और सानू बेलवल तो लैके तुसी लिंडजी लिंडजी तो लैके बैरी बैरी तो लैके तुसी सानू विंगम मैनिटोन आइलैंड तक सुन रहे हो तकरीबन 1000 किलोमीटर के रेडियस ईस्ट वैस साउथ नॉर्थ में एम 530 में सुनया जा रहा। मैं अमनदीप सिंह बैनीपाल मुखातब हाँ तुहाडा हर सवेर की तरह और तुसी मेरे कोई भी कॉन्टैक्ट करना 416-518-3200 साडा नंबर है 416-518-3200। मेरे तो पहला पंजाबी लहरा मेरे तो बाद गुरदासपुर हरजीत ते तुसी प्रोग्रामा दे सिलसिले नू ये कहाँ आ गए यूं ही साथ चलते चलते साडे नाल चलते चलते 905-673-3337 जिथे चलेगा चलूंगी नाल तेरे पर टिकटा दो ले ली थोड़ी टिकट है टू कॉल इन स्टूडियो 905-673-3337। एक बार फिर तो चलिए उस सफर के वाल जो बहुत खूबसूरत पर थोड़े साथ हमेशा इतना आगाज उस परम पुरख परमेश्वर के नाम ओट आसरे जिसके नाम ओट आसरे आगाज दुनिया की रक्षा का दिन खुशगवार रहेगा चढ़ती कला वाला निरभउ निर्वैर रहेगा मुस्कुराहट चेहरे का हिस्सा रोशनी रस्ते दिखावेगी तुसी चलते रहोगे। एम 530 मैं अमनदीप सिंह बैनीपाल एक बार फिर तो एक डेकेड तो भी लंबे समय का ब्रॉडकास्टिंग सैक्टर थोड़ा साडा साथ और साढ़े नाल तुसी अपने बिजनेस नूं प्रमोट करना तो प्राइम टाइम च रश आवर दे विच जिथे तुसी हुण निकल चुके हो अपने घर तो कम तक जरूर अपने बिजनेस नूं लख दी गिनती विच लोगों तक पहुँचा सकते हो। ये कोई यूट्यूब या फेसबुक के फेक व्यू या लाइक नहीं इस विच रियल लाइफ के रियल लोग मिलते हैं। एम 530 के उत्ते या तुसी अपनी वीडियो और ऑडियो एडवर्टीजमेंट लिए सानू मिलना 416-518-3200 416-518-3200 वादा है कि तुहाडे बिजनेस नूं बड़े अच्छे तरीके नाल दौड़ मरोड़ के नहीं अच्छे तरीके नाल लोगों तक लैके जाने हैं। कुछ खबर जिन्हां नूं तुहाडे तक लैके आ रहे हैं तो कुछ गल्लां बातां तुसी सुनाओ की हाल चाल ने। उम्मीद करदा कि बहुत वधिया अज दा खूबसूरत सवेर पीयरसन एयरपोर्ट का ट्रैक 6 खाली पिया मेरे सामने 401 दे नाल डेली रोड ते भी चहल पहल नज़र आ रही है तो अज की कुछ खलां ते खबरां ते कुछ सिलसिला लेके वापस आ रहे हैं ते मिलते हैं छोटे जे ब्रेक तो बाद।
1: शो नो एंजॉय कर रहे हो कुछ बोल रहे हो
2: ड्राइविंग लाइसेंस
1: नो
2: पुलिस ऑफिसर
1: नो नो
2: ट्रैफिक लाइट्स
1: नो
2: देन
0: डायमंड इंश्योरेंस दे पवन कौर गिल दा ए मैसेज मोस्ट ऑफ इंटोरियंस इग्नोर कर रहे हैं अपनी ऑटो इंश्योरेंस रिन्यूअल या अपने रेट नो चेक कर ले आज ही कॉल करो 30 तो वध कंपनीज दा काम कर रहे पवन कौर गिल 3 मिनट दे विच 300 तो लेके 1500 तक साल दी इंश्योरेंस कट सकदी है ऑटो होम और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज दी 647-325-9900 625-9100 पवन कौर गिल फ्रॉम डायमंड इंश्योरेंस।
3: जिंदगी एक सफर है सुहाना।
0: घर नूं पेंट करवाउणा हुंदा है कन्फ्यूज हो जांदे हो बहुत सारे पेंटर्स ते पेंटिंग कंपनी दे नंबर पर तुसी रियल्टी पेंटिंग नूं क्यों नहीं चुनोगे। फायर स्टेशन 5 स्टार होटल्स बिल्डर दे कस्टम कार्स या सरकारी इमारतां नूं पेंट कर चुके हन उत्थे तुहाडे घर नूं 24 घंटिआं दे अंदर अंदर पेंट कर दिंदे हन। इन्हां दा रेट इन्हां दी क्वालिटी नूं कोई भी मैच नहीं कर सकदा। 7 साल दे कीते हुए काम दी गारंटी होवेगी। फ्री एस्टीमेट लई सुखमन नूं कॉल कर सकदे हो 416-816-8401 416-816-8401।
4: हेलो ब्रो किथे है तू।
5: मैं क्लाइंट नु मिलन जा रहा सोच रहा सी टिम हॉर्टन्स च बैठ जाइए।
4: ओ यार ये तो ओल्ड स्कूल हो गया हुन ता क्लाइंट मीटिंग्स क्लासी होनिया चाहिदिया ने। नजारा रेस्टोरेंट लेके जाओ उन्हां नु प्राइवेट बूथ्स ने फुल प्राइवेसी मिलदी है फ्री वाईफाई ते लग्जरी एंबियंस बिजनेस मीटिंग भी सेट हो जांदी है ते खाना भी बहुत वधिया।
5: ओहो ये तो प्रॉपर प्रोफेशनल मीटिंग हो गई।
4: नजारा रेस्टोरेंट 30 रैम्बलर ड्राइव ब्रैम्पटन मेजर इंटरसेक्शन स्टील्स एंड कैनेडी हुई कॉल करो 905-451-2600 905-451-2600।
6: रुपिंदर गरेवाल लॉ ऑफिस रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन विल बनाउन लई फैमिली लॉ जा फिर पावर ऑफ अटॉर्नी ऑल सर्विसेज अंडर वन रूफ कम्युनिटी दा जानिया पहचानिया नाम रुपिंदर गरेवाल बैरिस्टर सॉलिसिटर एंड नोटरी पब्लिक लोकेटेड एट चिंक्यूजी एंड बवेट फॉर ऑल सर्विसेज कॉल 905-497-1211 905-497-1211।
7: F-154 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਟਰੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। F-150 ਜਾਂ ਮਸਟੈਂਗ ਜਾਂ ਲਿੰਕਨ ਜਾਂ ਫੋਰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅਨਿਲ ਚੋਪੜਾ, ਰੋਹਨ ਚੋਪੜਾ, ਚੋਪੜਾ ਬ੍ਰਦਰਸ, ਚੋਪੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। 42 ਸਾਲ ਤੋਂ ਟੌਪ ਸੇਲ ਇਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਕਾਰ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲਟਨ ਫੋਰਡ ਤੋਂ ਚੋਪੜਾ। ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਟਨ ਫੋਰਡ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 416-300-2-9941।
8: ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਫਸਟ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਮੈਂ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ, ਗੱਡੀ ਪੇਂਟ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਝੰਜਟ। ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਪੀਡੈਕਸ ਆਟੋ ਕਲੀਜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਾਲ ਖੁਦ ਡੀਲ ਕੀਤਾ, ਰੈਂਟਲ ਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਵਰਗੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੋ ਸਪੀਡੈਕਸ ਆਟੋ ਕਲੀਜਨ, 181 ਰਦਰਫੋਰਡ ਰੋਡ ਸਾਊਥ, ਯੂਨਿਟ 11, ਤੇ ਜਾਂ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-277-9221, 416-277-9221।
9: ਯਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਕਨੋਮੀ ਬਹੁਤ ਟਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਲੋ ਹੈ, ਬਿਲਡਰ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗਸ ਰੁਕ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਬਿਜ਼ਨੈਸਸ ਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਿੰਗਸ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਲਈ ਲੀਗਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਥਰੂ ਦੀ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਅਸੈਸ ਕਰਨ, ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਤੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਰਿਲੀਫ ਆਪਸ਼ਨ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਗਲਾ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਪਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-518-3200।
7: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਾਂ PR ਹੋਲਡਰ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਜਾਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਰਖਿਆ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲਾ ਨਾਮ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਈਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਈਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ਾ 9592200200, 95-922-00 ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ

0: हेल्थ इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट फ्रॉम टॉप चॉइस इंश्योरेंस एजेंसी।
1: इस बार रक्षाबंधन के पावन अवसर को बनाएं और भी ज्यादा स्टाइलिश। खरीदिए जेटीए में कहीं और ना मिलने वाली बेहद खूबसूरत राखियां इंडिया सजावट एंड पूजा हट से, और आपके घर की सजावट के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा ओनली एट इंडिया सजावट एंड पूजा हट। 31 मेलनी ड्राइव, यूनिट 5, ब्रैम्पटन, 9054586808।
2: लाओ जी चक्को फिर खुशखबरी, ब्रैम्पटन निवासियां ले खुशखबरी। हुण जदों भी तुसी कनेडियन

Brampton. या फिर तीजी लोकेशन 9985 मैकविन ड्राइव यूनिट 9 ब्रैम्पटन इंडियन फ्रूटलैंड ते हुण चौथी नवी लोकेशन 1465 मेफिल रोड ब्रैम्पटन वधिया ग्रोसरी सब तो नेड़े इंडियन फ्रूटलैंड 9054569900

0: हो, ऐसे गीत सुबह सुबह लग जाएं। और भाई जान, तो फिर आपका दिन, तो कहते हैं ना वे, फिर आपका डे और अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। ए गीता दे विच ना देखो, तुहानू प्यार किन्ना अच्छा लगदा, किन्नी मुहब्बत दिखाई देंदी है, किन्ना एक दूसरे प्रति खिच दिखाई देंदी है। सच यही है जिंदगी दा, जेड़ा आपस दे विच प्यार है ना, सब तो वड्डी दुनिया दी दौलत ये है। जिन्ने मर्जी ग्रंथ देख लो, जिन्हां ग्रंथ दे अगे जाके असीं नमस्कार करदे हां, नाम जपदे हां, ग्रंथां जो लिखिया है, जिन्हां ग्रंथां नूं जाके असीं मत्था टेकदे हां, जिन्हां ग्रंथां नूं जाके असीं नमाज पढ़दे हां, जिन्हां ग्रंथां नूं जाके असीं गीता च पढ़दे हां, हर ग्रंथ दे विच जिहड़ा प्यार है उस नूं सब तों उपर रख्या गया है। प्यार तों वड्डी दुनिया दे विच होर कोई चीज़ नहीं है। ये दौलतां, शौहरतां, रहना सहना, खाना पीना सब कुछ पिछे है। जे जिंदगी तुहाड़ी च प्यार है तो कहिंदे बड़ा ही खूबसूरत जिंदगी लंघदी है। ये प्यार एक ऐसी चीज़ है, रब ने एक ऐसी चीज़ बनाई है प्यार, और मैं समझता इस तो वड्डा कि दुनिया में कोई होर खजाना नहीं है पंजाबी विरसा। हैलो
1: हाँ जी,
0: जी सर,
1: मैं कहा तुसी हंसरा हंस जी दे सारे गाने लगाने हैं, एक गाना नहीं लगाया। मेरी पिछले हफ्ते रिक्वेस्ट करने से बट हुई नहीं अपनी।
0: केड़ा सर?
1: तुसी ओहो लगाओ हंसरा हंस जी दा, ओहो बिच्छू मूवी दा, टोटे टोटे हो गया।
0: हाँ सच, वो भी सी गाना यार,
1: हाँ
0: वो
1: पांच
0: भी
1: मिनट तक डेस्टिनेशन आया ना मेरा।
0: कोई गाली कोई नहीं, मैं बस लगा लान। थैंक यू वेरी मच, तुम हमने लाने पर।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्बन रोड इटोबिको। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 416-213-1165।
1: भाई साहब जिंदगी दा कोई भरोसा नहीं, इस करके हाथ दे विच इंश्योरेंस पॉलिसी होनी बहुत जरूरी है।
2: ता इस लई आज ही हरप्रीत सैनी नु मिलो। इना कोल ने स्पेशल लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स विद इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। तुहानु सिर्फ 10 साल या 20 साल लई पे करन दी लोड है ते इन्ने नाल ही तुसी पूरी लाइफ कवर्ड हो। डिविडेंड्स दे नाल हर साल कैश वैल्यू ग्रो कर दी है ते कवरेज इंक्रीज कर दी है। वधेरी जानकारी लई कॉल हरप्रीत सैनी 416-817-5500
3: आज खुश तो बात होगी
4: ओ ता होना ही है जो तो टिलो वीडियो दा नो फ्रीजिंग नो बफरिंग आला 4K अल्ट्रा हाई क्वालिटी IPTV बॉक्स होवे ऐ नकदा बनदा ही है।
3: हां मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी
4: साडे कोल। बॉलीवुड मूवीज ने टीवी शोज वेब सीरीज हिंदी पंजाबी लाइव टीवी चैनल्स एंजॉय करन नु वर्ल्ड्स बेस्ट ते हाईएस्ट क्वालिटी वाला IPTV बॉक्स है ते नाले टिलो वीडियो कोल गुरबानी रेडियो भी है ते डिलीवरी बिल्कुल फ्री। होर दस क्या चाहिदा है?
5: चल क्या रहे हो पर
4: ओ पाजी सेलिब्रेशन 40 इयर्स इन एंटरटेनमेंट बिजनेस।
6: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है।
4: पर टिलो वीडियो ते जदों मर्जी आ जाओ। एबनीजर एंड गोर रोड 905-204-1313 जां tillovideo.com। होर कोई सेवा
7: नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
8: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129। 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 905-460-8888।
7: सर्विंग फ्रॉम 2 लोकेशंस बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
9: मित्रां दे जंक्शन ते
10: ओ केड़े जंक्शन ते?
11: इक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते।
9: रात लगियां महफलां रे
11: भाई महफलां ते रोज ही लगदियां ने। इक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते। इक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते आओ ताजा स्वादला खाओ ते 100% दी कैपेसिटी वाले शानदार बैंकुट हॉल विच अपनियां खुशियां दे जश्न मनाओ। टिक्का जंक्शन ब्रैम्पटन करदे ने केटरिंग बिग और स्मॉल विद लाइव फूड ट्रक 11 AM to 6 PM ऑल ड्रिंक्स 50% ऑफ। टिक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते कॉल करो 647-429-4040। टिक्का जंक्शन ब्रैम्पटन।
12: Kataria Tours and Travels located near 2883 Derry Road, East Upper Airport and Derry, the intersection upper. Tusi cheap flight tickets Nepal de vichon, Toronto to Delhi, Delhi to Amritsar de route options sunu chahide ne. Jan tusi visa services Nepal de vichon, puri family vacation upper jaan di soch rahe ne, jithe tuhanu all inclusive vacation packages bhi milde ne. Pahunchna waji Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection upper. Call kar sakde ho 905-678-1200. 905-678-1200 Kataria Tours and Travels Airport and Derry the intersection upar.
13: Ek life hai jisse love hai
14: ye kehte mujhse sab hai
15: aur ek ghar hai jiska dream hai

0: जी दोस्तों, एक बार फिर वतन दूर चा आप सब का निघा स्वागत है। और 9057990999 साडा नंबर है। इंडिया नाल भी साडी जिहड़ी लाइन है जुड़ चुकी है। कुछ खबरां साडे कोल पहुंचियां ने पंजाब तों, उत्थे गलबात होवेगी। स्टूडियो च किरण होरी मेरा साथ दे रहे ने ते तुसी सारे रब वर्गे स्रोते दर्शक साडा साथ दे रहे ने। ते अज काफी खबरां भी साडे कोल काफी हद तक नवीआं पहुंचियां ने, उहनां ते गल होवेगी ते प्लस कुछ एक विशा सबजैक्ट भी पहुंचे ने, उह वी तुहाडे तक असीं करांगे। जे तुहाडे कोल कोई है आस पास की खबर है, ट्रैफिक की खबर है, जां किसे सब्जेक्ट दे टाक शो करना चाहुंदे हो, लाइनां ओपन ने तुहाडे लई। नंबर है 9057990999। अज दा प्रोग्राम ढिल्लों वीडियो, समोसा स्वीट फैक्टरी, वुडबाइन बैंकुट हाल, मोना महंगी जी, सिंगापुर जूलर, टैलीटाइम इलैक्ट्रॉनिक, कटारिया टूर एंड ट्रैवल, टिक्का जंक्शन, ढाबा ऑन द फॉल, किया 427, अंकार टूर एंड ट्रैवल, पीजा डिपो, अंजम क्रेशी ते हरप्रीत सैनी होरां दे सहयोग नाल असीं पेश करांगे। सर बहुत जल्दी असीं हरप्रीत होरां नाल गल्लां बातां भी करांगे कुछ एक इंश्योरेंस संबंधी। सो किरण जी, आयां नूं की हाल चाल?
1: सत श्री अकाल सुखी जी, तुहानूं वी और साडे सारे स्रोतियां नूं साडे वल्लों प्यार ते निक्की सत श्री अकाल जी। और हाल चाल सुखी जी बहुत वधिया ने, और बिलकुल साडे लिसनर्स दे वी हाल चाल जिहड़े जी वधिया होणगे, इस चीज़ दी ही असीं जिहड़े जी उम्मीद कर रहे हैगे। और नाल दी नाल मौसम सुखी जी अज काफी वधिया होया है, काले बदल छा जाने, खुश्क पार्ट दे विच अप्रोक्स 25% जिहड़ा ए एक वारी अप्रैल दे विच भी होया सीगा 2024 दे विच। सो उदां दा मौसम मे बी अज आपां नूं जिहड़ा जी देखण नूं मिलूगा मोस्टली पार्ट्स ऑफ द कैनेडा दे विच। और नाल दी नाल वैदर रिपोर्ट जिहड़ी जी सांझी करदे दसदी कि अज दा वैदर हैगा 21 डिग्री, शाम नूं 20 डिग्री, ओवरनाइट जिहड़ा जी 18 डिग्री, हवा दी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटे दी रफ्तार दे नाल, ते एयर क्वालिटी इंडैक्स हैगा जी 2। ते नाल दी नाल जिथे कि अज दिन चढ़िया सी 6:20 ते दिन चल जाना है 8:26। सो यह सी अज की वैदर रिपोर्ट। और नाल दी नाल जिहड़ा जी दसदी कि अज दा प्रोग्राम तुहाडे तक असीं पेश कर रहे मुकेश चौहान जी दे सहयोग दे नाल जी पेश कर रहे हैं। और मोर्गेज संबंधी तुसी कोई भी जिहड़ी जी जानकारी लैनी, भावें पहली बारी तुसी घर बाय जिहड़ा जी कर रहे हैं और भावें सैकेंड टाइम है, तुहानूं लोन दी जिहड़ी जी कोई भी जरूरत हैगी ते गलबात हो सकती है मुकेश चौहान दे नाल 6475127000 ते तुसी इन्हां दे नाल भी जिहड़ी है जी गलबात कर सकते हैं।
0: जी किरण जी, आपां पिछले कई दिनां तों दसदे आ रहे सी कि ब्रम्पटन च इक बहुत वड्डा बहुत वधिया प्लाजा बन जा रहा, बड़ी वधिया लोकेशन दे उत्ते बन जा रहा हैगा, और अज सानूं सिटी ने रेंडरिंग बहुत खुशखबरी है व्यापारी सज्जना दे लई। अगर इस प्लाजे दे विच अपना यूनिट बुक करवाना चाहुंदे हो, मैं दस दवां तुहानू कि यह प्लाजा ब्रम्पटन दे बनेगा साउथ, यानी कि हाईवे 410 अते हाईवे 10 दे बिल्कुल नजदीक बनेगा। दोनों हाईवे तुहानू कॉर्नर च मिलणगे ते जिथे तुसी उत्थे किसी तरह का भी फैशन का स्टोर खोलना, ज्वेलरी का स्टोर खोलना, ग्रोसरी का स्टोर खोलना, तुसी डॉक्टर ऑफिस तुहानू चाहिए, डेंटिस्ट चाहिए, फार्मेसी चाहिए, लेजर चाहिए, पीजा स्टोर चाहिए, बेकरी चाहिए, गल की है तुहाडे कोल हुण सुनहरी मौका है, तुसी साडी टीम नू फोन करके बुक करवा सकते हो। 2 साल दे विच इह बन के तैयार हो जाणा है। नंबर है 416-881-7070। हुण तुहाडे कोल मौका है कि तुसी किसी भी बिजनेस के लिए इसनों बुक करवा लो। जे ए ना होवे कि तुसी बाद चो कल परसों ट्राई करो ते कोई होर बुक करवा गया एक्सक्लूसिव, ते फिर तुहानूं ओह बिजनेस नहीं मिलेगा। किसी तरह का भी तुसी बिजनेस करना चाहुंदे हो, उत्थे ट्रैवल एजेंसी करनी चाहुंदे हो, अकाउंटिंग का बिजनेस करना चाहुंदे हो, इंश्योरेंस का बिजनेस करना चाहुंदे हो, मॉर्गेज का करना चाहुंदे हो, मीट शॉप बनानी चाहुंदे हो, रेस्टोरेंट बनाना चाहुंदे हो, तुसी ग्रीक फूड का जां भावें पाकिस्तानी फूड, इंडियन फूड, किसी तरह का भी हर तरह का ही यूनिट इस टाइम थोड़े लिए अवेलेबल है। नंबर है 416-881-7070। मेरे नाल साडे नाल स्टूडियो च शाह साहब भी आ गए ने। शाह साहब जी, आयां नूं वेलकम।
2: बहुत शुक्रिया सुखी जी, रेडियो प्रोग्राम सुनने नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।
0: सत श्री अकाल जी। और शाह साहब, पहला तो तुहानूं मुबारकां, तुहाडा कल जन्मदिन सीगा
2: जी। बस
0: चलो
2: जी, तुहानूं वी और तुहानूं पता परसों तुहाडा सी
0: जी, बस
2: और हमेशा असीं इकट्ठे सैलीब्रेट कीता है रब दी मेहरबानी नाल जी।
0: बिल्कुल सारिआं दा जी, होर वी कईआं दा होवेगा, उहनां नूं वी मुबारक
2: जी।
0: ते उधरों लाइन जिहड़ी आ भारत दे नाल वी जुड़ गई है, मनप्रीत होरां नाल वी कुछ गल्लां करीए। मनप्रीत जी, जी आयां नूं
3: सत श्री अकाल सुखी जी, थानू भी जी आयां नूं, लिसनर्स नूं भी जी आयां नूं, ते शाह जी नूं भी जी आयां
0: नूं जी। थैंक यू जी। केहड़ी खबर तों शुरू कर रहे हो
3: जी? मैं खबर तो शुरू करके ते खबर ही सुखी जी सुना देनी, अज सेहत थोड़ी जी ठीक नहीं है, सो गल्लां बातां दे सिलसिले तो मैं इजाजत लूंगी।
0: चलो कोई गल नहीं जी, करो करो, ने साडे को बहुत खबर ने इथों दी।
3: ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ 15 ਅਗਸਤ ਆ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸੈਚਰਡੇ ਸੰਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਕਐਂਡ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖੀ ਜੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ ਔਰ 15-16 ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਰਹੂਗੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਕਾਲਜ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣੇ ਆ ਤੇ 14 ਅਗਸਤ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪਰੋਲ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰ ਮਾਤਾ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਾਗੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਊਗੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਯਕੀਨੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੁੱਖੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਕੇ 3 ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੋਲੀ ਨਿਗਲ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਦੋਸਤੋ ਸਾਰੇ 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 21-22-23 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਐਂਡ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਗਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਨਹੂਸ ਖਬਰਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਚੋਰੀ ਘੁਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 40 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਇਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕਲੇਸ਼ ਸੀ। ਐਸੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਲਿਸਨਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਘਰੇਲੂ ਕਲੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ ਵਤਨਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਤਨੋਂ ਪਾਰ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੇਧ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਕਤਲਕਾਂਡਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਕਰੀਏ ਪਰ ਸੁਖੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨੇ। 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਕਰਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਪਰ ਇਹਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ 1:30 ਵਜੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਾਲਾ ਵਾਸੀ ਬੂਹਥਾੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੌਕੇ ਤੇ 6 ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਤਲ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਸ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ 1924 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਗੁਹਾਰ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੇਕਸੂਰ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਨਸਾਫ਼ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤ ਅੱਜ ਮੌਤ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
0: ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਰੈਸਟ ਤੇ ਕੱਲ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨੰਬਰ ਹੈ 9057990999 ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਡੇ ਹੁੰਦਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸੈਣੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਹੋਰੀ ਅੱਜ ਸਟੂਡੀਓ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਕੁਛ ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਬਾਹਰ ਏਦਾਂ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਕੌੜੇ ਮੰਗਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਕੌੜੇ ਮੰਗਾਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੀ ਆਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੱਗ ਗਿਆ।
4: ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨੀ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਨੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨੀ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨੀ ਮਿਲੇ।
0: ਬਿਲਕੁਲ
4: ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾਮ ਦਾਣੇ ਦਾਣੇ ਤੇ।
0: ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੀ ਆਏ ਤੇ ਪਕੌੜੇ ਬਚ ਗਏ ਆ, ਖਾਵਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਚੋ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਗਏ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ
4: ਨੀ, ਇੱਥੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨੀ ਹੈਗਾ।
0: ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਜੋ ਜੀ ਅੱਜ ਪਕੌੜੇ ਖਵਾਉਣੇ। खबर है शायद शाह साहब तुहानू भी पता तुसी ब्रैम्पटन दे बिजनेस अम्बेसडर हो जून 2023 दे विच एक घर दे विच अग लगी सी जिस दे विच एक गर्भवती औरत दे नाल 3 साल दी बच्ची दोनों दी मौत हो गई सी ते घर काफी सड़ गया सीगा ते ओ तो बाद जिहड़ा एस टाइम उन्हां ने सिटी ने जां कोर्ट ने जिहड़ा ओ ओनर नूं फाइन कीता 135 दिन की उन्होंने कस्टडी च रहना पेगा 50,000 तो वह जो फाइन है क्योंकि उन्होंने जो यूनिट सी उसका बेसमेंट ज्यादा बनाए सी लीगल बनाए सी चक्के में भी ते हुण ये जे कई बार आपां गैली कर लेने कि इंश्योरेंस सानू नहीं की होजूगा पर देखो ना एक तो इधरों नुकसान एक घर का नुकसान एक दो व्यक्ति उत्थे व्यक्ति उत्थे उन्होंने जान चलेगी ते जे किते उदों इंश्योरेंस ना होवे फिर किन्ना औखा
2: राइट
0: सो हरप्रीत जी तुसी इस फील्ड दे विच काफी सालां तों आ तुहानू किन्ने इक परिवार इदां दे मिलदे जिहड़े कहिंदे कि यार ओह साडे कोल अणगहिली हो गई जे उदों आ चीज कर लैंदे ते बड़े चंगे रहिंदे
4: काफी सारे सुखी जी क्योंकि आपां वैसे दा इन्ना टाइम हो गया मतलब 16-17 साल हो गया तुहाडे नाल रेडियो माध्यम दे वी जुड़े होया नूं हर रोज डिफरेंट डिफरेंट रेडियो टाइमिंग दे उपर मैसेज दिंदे आ नूं इवन तो मैं कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एडवाइजर्स आंदे रहिंदे आ ते सानूं कई वार इदां लगदा हुंदा कि काफी अवेयरनेस आ गई आ अपनी कम्यूनिटी दे विच क्योंकि आपां पंजाबी रेडियो ते आउंदे आ ते इस करके अपनी कम्यूनिटी दी ही गल करांगे सो उदों इदां लगदा हुंदा कि हां असीं इन्नी इंश्योरेंस दे बारे बोलदे आ लाइफ इंश्योरेंस दे प्लान दसदे आ क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस दे लिविंग बेनीफिट की गल करते हैं कि काफी ज्यादा अवेयरनेस है पर जो तुम एक्चुअल मार्केट देखते हैं तो बहुत घट रेंज परसन है जिन्होंने कोल प्रॉपर कवरेज हैगी कई को बिल्कुल कोई कवरेज नहीं हैगी कई शायद इदा सोच के चलते हैं कि कुछ नहीं होने वाला जे कुछ भी होया किसी होर होजूगा सानू कुछ नहीं होना है इस करके सानू कोई कवरेज की जरूरत नहीं है कई बार आप सोचते होंगे कि पता नहीं किन्नी क महंगी आनी है इस करके आप कवरेज नहीं कराते कई बार आप लोड़ ही महसूस नहीं होंगी है कि इस करके आप कवरेज नहीं कराते एंड जो कुछ हैपन हों फिर सब तो पहला कंसर्न भी यही आता है कि इंश्योरेंस हैगी सी कि नहीं हैगी सी हुण जे किसी यंग परसन की डैथ होंगी है ना तो फ्यूनरल होम के तकरीबन हरेक बंद का एको ही क्वेश्चन होंगे कि इस बंद को इंश्योरेंस होगी ये छोटे छोटे बच्चे ये को कवरेज होगी ये हुण फैमिली फाइनैशियली कि अपने आप को कवर अप करेगी सो उस वेले जे आप सोचते हैं कि इंश्योरेंस होगी तो यह मतलब कि इंश्योरेंस की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस आ जिन्हों असी किसी वेले इग्नोर कर दें पर यह है कि कल अगर कोई भी हैपन होंगे है जिड़े हम तुम सनैरियो की गल की है इदा के एक्सीडेंट्स बहुत बार हैपन होंगे रहते हैं रोड से भी घर अग लगन के नाल भी पर यह है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना साड़ी रिस्पोंसिबिलिटी आ कि कल अगर इदा का कुछ भी इशू हो साड़ी जिहड़ी पिछे रहिंदी फैमिली हैगी ये सारा कुछ सफर ना करना पवे जिन्हां दे लई अज असीं एक एक दो दो तीन तीन कम्मां ते भी जा रहे हैं इनकम अर्न करन दे लई कल उन्हां दे उपर इस चीज का बर्डन ना पवे कि हाँ कोई कवरेज ही है नहीं सी सिर्फ एक इंश्योरेंस पॉलिसी ही आ जिन्हें मतलब कि जो क्लेम दे टाइम दे उपर तुहाडा क्लेम पे आउट होना है तुहाडी फैमिली नूं ते उन्हां ने ही फाइनैंशियली हैल्प करना है फैमिली नूं अदरवाइज जे आपां कहीए कि किसी भी रैलेटिव ने दे देने आ किसी दोस्त मित्र ने दे देने आ बहुत साउंड होणगे तां मे बी थोड़े बहुते 1,000-2,000 डॉलर दे भी देन बट अज दी सिचुएशन दे विच हरेक कोई बंदा हैंड टू माउथ आ हरेक दीआं आपणीआं खर्चे हैगे आपणीआं लाइबिलिटियां जिन्हां नूं ओह कवर कर रहे आ सो किसी दे कोल वी इन्ना सरमाया नहीं हैगा अज वी आपां देखिए जे किसी स्टूडेंट दी वी डैथ हुंदी हैगी आ गो फंड मी दे उपर अकाउंट बणदे आ तां बहुते बंदे दा कंसर्न इही हुंदा सी कि उदों कदों नहीं इंश्योरेंस करवा ली सी जिहड़ा हुण अज असीं गो फंड मी ते अकाउंट खोलिया होया नो डाउट अपनी कम्यूनिटी जिहड़ी हैगी आ डोनेशनस दे लई बहुत वधिया आ अगे आउंदे आ हमेशा हैल्प करन दे लई तां ही करके गो फंड मी ते फंड भी कलैक्ट हुंदे आ पर जे अपने कोल इह ऑप्शन हैगी आ कि असीं अपनी इंश्योरेंस करवा सकदे आ तां फिर वाई नॉट फिर असी इस चीज नूं कहते सोच के चलते हैं कि साड़ी फैमिली सब तो बाद फंड कट्ठे कर दे फिर
0: हरप्रीत जी एक पिछले दिनों दे विच खबर सी कि कोई इदां ही कोई आए सी इत्थे स्टूडेंट उन्हां दी डैथ हो गई ते उन्हां कोल फंड नहीं सीगे उन्हां ने इदां ही गो फंड तो फंड इकट्ठा कीता ते बाद दे विच उन्हां दे कुछ रिलेटिव परिवार दे मैंबर भारत तो आए ते फ्यूनरल दे विच उन्हां नूं देण नूं फंड नहीं सी उन्हां कोल उह कहिंदे फ्यूनरल वाले ने कहा कि तुसीं तां गो फंड ते फंड इकट्ठा कीता पिछले दिनों दे विच तुहाडे कोल फंड सीगा कहिंदे जी उह तां असीं उन्हां दी शॉपिंग कर ली जिद्दन दे आए आ हुण तां साडे कोल है
4: ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਨਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪੈਸਾ ਗਲਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੋਫੰਡਮੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਪਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
0: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ,
4: ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਊਗੀ, ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਐਟਲੀਸਟ, ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੇ ਪਰਸਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ, ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਖਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਕਵਰ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਹਰੇਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇਗਨੋਰੈਂਟ ਨਾ ਬਣੀਏ ਕਿ ਹਾਂ ਹਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਅਰਲੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਯੰਗ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਹੈਲਦੀ ਆ, ਵਧੀਆ ਪਲਾਨ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਵਧੀਆ ਅਮਾਊਂਟ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਲੈ ਸਕਾਂਗੇ, ਲੇਟਰ ਔਨ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜਿਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 10 ਸਾਲ ਦੀ ਟਰਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, $15-20, $10-12 ਤੋਂ ਪਲਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਇੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕਵਰੇਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਈ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਲੇਟਰ ਔਨ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੇਂਜਿਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਾਂ ਪਲਾਨ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਸਨਰਸ ਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ 416-817-6500-416-817-6500।
0: ਜੀ 416-817-6500 ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਸੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਸਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖਾਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਹਾਈਵੇ 410 ਤੇ ਮੇਫੀਲਡ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਰੈਂਡਰਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਨਕਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫੈਸ਼ਨ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਜੁਵਲਰੀ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਫਰਨੀਚਰ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਬੈਂਕ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਆ, ਡਾਲਰ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੈਲ ਫੋਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਿਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਡੈਂਟਿਸਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਾਰਮੇਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਲੇਜ਼ਰ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਬ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀਜ਼ਾ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬੇਕਰੀ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਪ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਬਵੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਅਨ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ, ਗ੍ਰੀਕ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਾਂ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦਾ ਆਫਿਸ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਆਫਿਸ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਮੌਰਗੇਜ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਅਤੇ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਹੋਲਡ ਕਰਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਡੀ ਟੂ ਗੋ ਵਾਲਾ ਮਿਲਣਾ, ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾ ਏਰੀਆ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਨੰਬਰ ਹੈ 416-8710-7070-416-881-7070 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਚੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਾਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਓਪਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਪਲਾਜ਼ਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਲਡ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਨੰਬਰ ਹੈ 416-8710-7070-416-881-7070 ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੌਰਗੇਜ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਚੱਲਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ ਜੀ।
1: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ।
5: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਿਰਨ ਜੀ, ਆਪ ਨੂੰ ਔਰ ਸਖੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਜੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਗਾਇਸ ਇੰਜੋਇੰਗ ਦੀ ਟੂਡੇਜ਼ ਵਾਟ ਲਾਈਕ।
1: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਚਾਏ ਵੀ ਪੀਨੇ ਆਏਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਨੇ ਚਾਏ ਕਾ ਵੀ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿਆ ਹੈ।
5: ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਵਾਈ ਨਾਟ
1: ਜੀ, ਮੌਸਮ ਵੀ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਜੋ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਬਾਏ ਕਰ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੈਕਿੰਡ ਮੋਰਗੇਜ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਥਲੀ ਮੋਰਗੇਜ ਪੇਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਸ ਆਊਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਦਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਚੜ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾਟ ਇਵਨ 1%, ਬਿਕਾਜ਼ ਮੁਕੇਸ਼ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਨੰਬਰ बहुत सारे हमारे लिसनर्स ऐसे होते हैं क्लाइंट्स जिन्हें कहीं पता ही नहीं लगता कि उनकी मोर्गेज जो है मिस आउट हुई हुई है, सो उसके लिए आप कैसे उनकी हेल्प कर सकते हो?
5: डेफिनेटली जी किरण जी, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. देखिए अगर आपने मॉर्गेज मिस करी है, राइट, मैं अभी एक रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा आपको. वन ऑफ माय क्लाइंट ही मिस फाइव मंथ्स ऑफ मॉर्गेज पेमेंट, है ना, पांच महीने के पेमेंट्स में आपको नोटिस भी आ जाता है. क्लाइंट के पास एक तो बैंक से भी कलेक्शन कॉल शुरू हो गई. क्लाइंट के पास सेकेंड मॉर्गेज भी थी जी, तकरीबन 2.5 लाख दी. क्लाइंट के पास बीडीसी लोन थी, उसकी भी आउटस्टैंडिंग $1 लाख और कुछ डेट्स हैं, क्रेडिट कार्ड डेट्स एक दो बैंकों के, राइट. तो ओवरऑल सिनेरियो में देखें, अगर क्लाइंट जब मॉर्गेज मिस करता है तो इवेंचुअली क्या होता है, क्लाइंट गेट अ नोटिस फ्रॉम द बैंक फॉर अ पावर ऑफ सेल, है ना. तो यही सिचुएशन हमारे क्लाइंट के साथ हुई किरण जी. क्लाइंट केम टू अस एग्जैक्टली 3 वीक्स बिफोर. हमने क्लाइंट को फंड्स अरेंज करके दिए. उस फंड से क्या हुआ कि जो 5 मंथ्स की मॉर्गेज मिस थी, वी ब्रिंग द मॉर्गेज अप टू डेट. सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है. तो क्लाइंट इज नॉट एनी मोर इन कलेक्शन. और दूसरी बात है, क्लाइंट का सेकेंड मॉर्गेज नहीं भी जो है, सेकेंड मॉर्गेज हु प्रोवाइडेड द लेटर कि भाई इतने दिनों में मॉर्गेज उनकी पे ऑफ हो जानी चाहिए, उनको भी पेमेंट टाइम पे ऑफ की गई, राइट. और साथ साथ बीडीसी लोन, आपको पता है गवर्नमेंट ऑल दी लोन्स आर ऑब्लिगेशन, पहले इनको विदाउट पेइंग देम यू कैन नॉट टेक द सेकेंड मॉर्गेज. अच्छा, एक और चैलेंज बता दूं कि अगर आपकी फर्स्ट मॉर्गेज टाइम पर नहीं है तो सेकेंड मॉर्गेज मिलती नहीं है. इट्स टफ, बट वी बीइंग इन इंडस्ट्री वेरी लॉन्ग टाइम, आई हैव अ वेरी गुड कॉन्टैक्ट्स, राइट, विद अ मिक लेंडर, विद द प्राइवेट फाइनेंसिंग, राइट, जहां पे आपकी सिचुएशन को मैं, आई कैन हेल्प यू टू टेक यू आउट फ्रॉम द वर्स्ट टू बेटर, है ना. एक्सीलेंट कंडीशन तो बनी जाएगी. अच्छा, अभी क्या हुआ, इस पूरी सिचुएशन में आपकी जो मिस हुई है, आपका कैश फ्लो का, क्लाइंट एक्चुअली डूइंग अ बिजनेस, राइट. मोस्ट ऑफ द बिजनेसमैन आर हैविंग अ 50% कैश पे बिजनेस करते हैं, 50% उनका बिजनेस में आता है. समटाइम इट्स बिकम वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन टू द लेंडर,
1: बट
5: बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस वी गॉट अप्रूवल. हमने फर्स्ट मॉर्गेज भी टाइम पे कर दी, सेकंड भी हो गई, क्लाइंट अप टू डेट हो गया. इसी क्लाइंट को विद इन नेक्स्ट 3 to 6 months वी विल मूव द एंटायर मॉर्गेज टू द बैंक साइड, है ना. तो देखिए, हर मॉर्गेज की अप्रोप्रिएट प्लानिंग होती है. एज यू मैंशन, ट्रांसपेरेंसी इज अ की, ऑनेस्टी इज अ की. आपको एक एक चीज बताई जाएगी इन योर बेस्ट इंटरेस्ट. आपका फायदा होना चाहिए. जब तक आपका फायदा नहीं हो तो बात ही नहीं होनी है, राइट. तो आपको फायदा $2,000 to $3,000 के फायदा होना चाहिए. फंड्स आपके, आपको लग रहा है, कोई भी सुन रहा है, उनको लग रहा है कि उनकी मॉर्गेज मिस हो गई है या आप क्रेडिट कार्ड पेमेंट मिस हो चुकी है, आपको कैश फ्लो की दिक्कत है, फाइनेंसिंग की प्रॉब्लम है, आपको लोन चाहिए, आपको घर से लोन निकालना है, इक्विटी चाहिए आपको, है ना. स्पेशली ड्यूरिंग दिस टाइम द बिजनेस हैज स्लो डाउन, राइट, बिजनेस हैज लोअर डाउन. आपको फाइनेंसिंग चाहिए, आई कैन हेल्प यू टू टेक द मनी फ्रॉम योर इक्विटी, चाहे वो रेजिडेंशियल है चाहे वो कमर्शियल है, राइट. सो दिस इज द ओवरऑल, आप इसी सिनेरियो में है, कहीं ना कहीं ट्रैप हो चुकी है. गिव मी अ कॉल, दिस इज मुकेश चौहान, मॉर्गेज ब्रोकर. नंबर टू कॉल मी 6475127000.
1: बिल्कुल मुकेश जी. और जाते जाते एक चीज सवाल मेरा आपसे और है. हम लोग कई बार बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, कई हमारे बहन भाई ऐसे होते हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, राइट, वो बनाते ज्यादा है इनकम बट डिक्लेयर कम करते हैं और फिर प्रॉब्लम उनकी मोर्गेज के रिलेटेड आती है. सो हाउ यू कैन हेल्प देम एंड गेट द मोर्गेज थ्रू?
5: देखिए, सेल्फ एम्प्लॉयड के पास कोई जॉब लेटर पे स्टॉप नहीं होती है, राइट. सेल्फ एम्प्लॉयड $2 लाख बना रहा है मगर वो ही डिक्लेयर्स हार्डली फ्यू इनकम, फ्यू अमाउंट बिकॉज ऑफ द एक्सपेंसेस, है ना. तो ये सारी दिक्कत आती है. और साथ साथ अगर किसी का लो क्रेडिट है, 600 से कम है, तो आप बैंक के पास मॉर्गेज लेने जाते हो, बैंक से मॉर्गेज नहीं हो पाती आपकी, है ना. तो मैं यही बताता हूँ कि रिसेंटली वी, अगेन अनदर गुड एग्जांपल, वी डिड द रीफाइनेंसिंग फॉर वन ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड क्लाइंट. उनकी, ही वॉज इन टू ट्रकिंग. तो इनकी 3 मॉर्गेज थी, तीनों की तीनों प्राइवेट मॉर्गेज के साथ थी, ना, वी मूव द मॉर्गेज टू द ऑल्टरनेटिव लैंडिंग साइट, है ना। तो हमने पूरी की मॉर्गेज उनकी बैंक साइट पे मॉर्गेज मूव कर दी, और जो इम्पोर्टेंट उनका क्रेडिट भी लो था उनको रेट भी रीजनेबल मिला, राइट। तो सिचुएशन क्या है कि सिचुएशन बैंक इज नॉट द लास्ट ऑप्शन। ऐसा नहीं कि आपको अपने बैंक ने मना कर दिया तो मॉर्गेज नहीं होगी, ऐसा नहीं है, राइट। आप खुद ही मॉर्गेज एजेंट या ब्रोकर नहीं बन जाए, आप किसी प्रोफेशनल को रीच आउट करें लाइक माई सेल्फ। आप अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ट्रकिंग इंडस्ट्री में, इमिग्रेशन में है, आपका बिजनेस स्लो डाउन है, रेस्टोरेंट बिजनेस के अंदर है, आप कंस्ट्रक्शन के अंदर है, आपका बिजनेस स्लो डाउन है, आई हैव अ सोल्यूशन फॉर यू, आई हैव अ सोल्यूशन। आप मुझे कॉन्टेक्ट करें, आपने कंज्यूमर प्रपोजल या बैंकरप्सी की है आपने पास्ट में, या अभी भी एक्टिव है, आप पे करना चाहते हो। हमारे एक और क्लाइंट है, उनकी हमने रीफाइनेंसिंग के थ्रू कंज्यूमर प्रपोजल भी पे ऑफ किया,
1: जी जी,
5: है ना। तो आप इसे सिचुएशन में है, ट्रैप हो चुके हैं, अपनी सिचुएशन बेटर बनाना चाहते हो, महीने दे जो है तो तुम ये सेव करना चाहते हो $2,000 से $3,000, या आपको पैसे की तंगी है जी, बहुत ज्यादा जोर लग रहा है, है ना। तो इसके लिए आप जो है आप बिल्कुल परेशान ना हो, आई हैव अ सोल्यूशन। माई ऑफिस इन मिसेसागा इन डेयरी थे जो ऑफिस है, आप मुझसे मिल सकते हो सैटरडे में। अगर आप दूर से आ रहे हो, सैटरडे को सिर्फ 3 आवर का विंडो है, 12 से 3 बजे के दरमियान में मीटिंग करता हूँ, और वैसे आप मुझे सुबह 10 से लेकर शाम के 7 बजे के दरमियान एनी टाइम मिल सकते हो, कॉल टेक्स्ट करें। दिस इज मुकेश चौहान, मॉर्गेज ब्रोकर, नंबर टू कॉल मी 6475127000, 6475127000।
1: बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थोड़ी जी लेने म्यूजिकल ब्रेक, फिर उस तो बाद एक होर साडे कोल दो खबरां पहुंचियां ने, उन्हां दे उत्ते थोड़ी जी गलबात होगी।

0: आज खुश नबात हो गया था।
1: वो तो होना ही है जो ढिल वीडियो का नो फ्रीजिंग नो बफरिंग वाला 4K अल्ट्रा हाई क्वालिटी IPTV बॉक्स हो गए नगता बनता ही है।
2: आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है।
1: बॉलीवुड मूवीज ने टीवी शोज वेब सीरीज हिंदी पंजाबी लाइव टीवी चैनल इंजॉय करने वर्ल्ड्स बेस्ट हाईएस्ट क्वालिटी वाला IPTV बॉक्स है ते नाले टिल्लो वीडियो कोल गुरबानी रेडियो भी है ते डिलीवरी बिल्कुल फ्री होर दस क्या चाहिए
3: क्या क्या रहा है यहाँ पर
1: ओ पाजी सेलिब्रेशन 40 इयर्स इन एंटरटेनमेंट बिजनेस
4: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है
1: पर टिल्लो वीडियो ते जो मर्जी आ जाओ एबनीजर एंड गौर रोड 905-204-1313 या टिल्लो वीडियो.com होर कोई सेवा

0: 416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551- कैनेडा दे स्टडी वीजा एक्सप्रेस एंट्री कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री स्पाउसल फाइल पेरेंट्स पीआर सुपर वीजा नैनी वर्क परमिट फार्मर इन्वेस्टर या सेल्फ एम्प्लॉयड दी फाइल गल की इमिग्रेशन दी हर प्रॉब्लम दा सलूशन लैन लई कम्युनिटी दे जाने पहचाने अते तजुर्बेकार इमिग्रेशन कंसल्टेंट गैरी विर्क नु मिलो
1: कोई केस रिफ्यूज हो गया या अपील ते चला गया होवे इमिग्रेशन दा कोई भी मसला हमेशा याद रखो इको ही ना अते इको ही था CIC इमिग्रेशन हुणे ही कॉल करो 416-456-6161
2: कनेडा विच रहंदे होए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई
3: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सम्राज सिद्धू तो ही करवाई है
4: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस डिसेबिलिटी इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिम्राज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-456-3381 ते 416-457-3381 ते
2: नाले जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है ता तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाउणगे हुणे ही सिम्राज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-456-3381 416-457-3381
5: ਲੱਖਾਂ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਨ ਦ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਐਮੀ ਵੇਅਰ
6: ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਰੂੰ ਆਓ ਜੱਟ ਖੱਬੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖਦਾ
5: ਟੂ ਸਾਊਂਡ ਲਾਈਵ ਐਂਡ ਸੈਲੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਮੀ ਵੇਅਰ ਲਾਈਵ ਇਨ ਟੋਰਾਂਟੋ August at Great Canadian Casino Resort. Toronto Valeo, ready ho jo. Buy your tickets at ticketmaster.ca or call 647-964-8573.
7: ਦੋਸਤੋ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚਲੋ AM 530 ਤੇ 24/7 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ www.deshpardeshradio.com ਜਾਂ www.deshpardeshtv.com ਲਾਈਵ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲਾਈਵ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਵਾਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ IPTV ਬਾਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ 24/7

0: फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेज या रीफाइनेंस करवाना चाहते हो तब तो सीधे अपनी गड्डी मोड़ो 1200 डेरी रोड ईस्ट यूनिट 22 मिसिसागा 416-804-2015 416-804-2015 सिंपली इंडियन ब्रिंग्स यू ऑल सिंपली डिलीशियस डील्स बाय वन गेट वन फ्री एवरी डे सवेरे 10 बजे शाम 7 बजे तक ऑन डाइन इन एंड टेक आउट्स मजा लवो संडे नु पराठा प्लेट मंडे मनपसंद कुलचा प्लेट ट्यूजडे चना भटूरा वेंसडे लाजवाब वेज थाली थर्सडे यमी हाका थाली फ्राइडे मजा लवो साग मक्की दी रोटी दा ए यमी डील्स सिंपली इंडियन दी सारिया ही लोकेशंस ते डाइनिंग टेक आउट एंड केटरिंग आल्सो अवेलेबल कॉल एट 9057948111 सिंपली डिलीशियस मतलब सिंपली इंडियन लखा दिला दी धड़कन द सुपरस्टार आमी वेयर
1: मैं किथे बैठे आ करूं आओ जट खब्बी सीट पे बंदूक रख दे
0: ब्लू साउंड लाइव एंड सेलुलर पॉइंट प्रेजेंट आमी वेयर लाइव इन टोरंटो At Great Canadian Casino Resort. Toronto Valeo, ready hojo. Buy your tickets at ticketmaster.ca or call 647-964-8573.
2: कनेडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई
3: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस दे सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है
4: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस डिसेबिलिटी इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-453-3381 ते 6-457-3381 ते
2: नाली जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाओगे हुने ही सिमराज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-457-3381 416-457-3381
5: हेलो एएम 530 तो तुसी सुन रहे हो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो
6: टुडे विच लाइव गलबात करन लई हुने कॉल करो 905-564-6444
5: 905-564-6444
6: सुनते रहो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो चलो AM 530 तो

0: CNE Grand 50/50 is on now. Get your tickets today at CNEF5050.com for more chances to win big and support a great cause. You could take home the guaranteed minimum grand prize of $250,000 or even more as the prize grows. Every ticket helps fund the CNE Foundation's community and youth programs. Please play responsibly. License RAF 156-8077.
1: Come and celebrate Toronto and do everything you want at the X.
2: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
3: The views and opinions of the guests and sponsors are solely theirs and not that of the hosts or management of Punjabi Lehra. Punjabi Lehra is not responsible for any interactions our listeners have with any businesses advertised on our shows.
4: जे तुसी जाना होवे किसी भी टोरंटो आइलैंड्स नू सेंटर आइलैंड वार्ड्स आइलैंड या हैनलिन्स पॉइंट ता लेके जाओ टी डॉट वाटर टैक्सी फेरी दिया दो तीन घंटे दिया लाइनअप्स तो बचो अते लेके जाओ अपनी प्राइवेट टी डॉट वाटर टैक्सी दी डॉक लोकेटेड है 1 क्वींस की ईस्ट ते यंग अते क्वींस की ईस्ट दे बिल्कुल कॉर्नर ते मामूली जिहा रेट अते आराम नाल राजिया वांग जाओ अपनी प्राइवेट वाटर टैक्सी ते टी डॉट वाटर टैक्सी 6473708368 ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਕ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿਕਟਸ ਵੀ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੈਸ਼ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀ ਡਾਟ ਵਾਟਰ ਟੈਕਸੀ ਦੀ ਐਪ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਟੀ ਡਾਟ ਵਾਟਰ ਟੈਕਸੀ ਦ ਬੈਸਟ ਵੇ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਸੈਂਟਰ ਆਈਲੈਂਡ
5: ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਬ੍ਰਿਜ ਮੋਹਨ

0: अजीत हरमन, क्या बात है, नहीं रिश्ता हरमन साहब चकते फटे। सो ओके तुसी समर एंजॉय करनी है तो फिर टी डॉट वाटर टैक्सी। जे तुसी जाना होवे किसी भी टोरंटो आइलैंड्स नू, सेंटर आइलैंड, वार्ड्स आइलैंड या हैनलिन्स पॉइंट, तां लैके जाओ टी डॉट वाटर टैक्सी। फेरी दियां दो तीन घंटे दियां लाइनअप्स तो बचो अते लैके जाओ अपनी प्राइवेट टी डॉट वाटर टैक्सी। टी डॉट वाटर टैक्सी दी डॉक लोकेटेड है 1 क्वींस की ईस्ट ते, यंग अते क्वींस की ईस्ट दे बिल्कुल कॉर्नर ते। मामूली जिहा रेट अते आराम नाल राजिआं वांग जाओ अपनी प्राइवेट वाटर टैक्सी ते। टी डॉट वाटर टैक्सी 6473708368। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੌਕ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿਕਟਸ ਵੀ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੈਸ਼ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਟੀ ਡੌਟ ਵਾਟਰ ਟੈਕਸੀ ਦੀ ਐਪ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। ਟੀ ਡੌਟ ਵਾਟਰ ਟੈਕਸੀ, ਦ ਬੈਸਟ ਵੇ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਸੈਂਟਰ ਆਈਲੈਂਡ।
1: This is AM 530, CHLO AM, an Evanoff communication station, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca.
0: The views and opinions of the guests and sponsors are solely theirs and not that of the hosts or management of Punjabi Lehra. Punjabi Lehra is not responsible for any interactions our listeners have with any businesses advertised on our shows.
2: ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਬ੍ਰਿਜ ਮੋਹਨ, ਪਿਛਲੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਕ੍ਰੋਸ ਕੈਨੇਡਾ।